0: ख्याल गर है, धेरै टाढो जानु छ, म जान्छु है।
1: हाम्रो आमालाई भेटिस् भने एकदमै खुसी छ भन्दैछ है।